सूरज जो यकजा हुए हैं, नूर पर नूर की हर जिया है, नूर इकसीर अनमोल भी है, नूर सीनों की धड़कन बना है।